कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू, आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के

साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 अगस्त महीने का सोमवार दिन और तारीख है 31। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतय और तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्र के समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सबे, जहां योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी। 10:10 सुनिए आपातकालीन न्यूज।

7:15 रहेगा मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दालिक न्यूज। 7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स।

0: 8 बजे सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में और 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। आज 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9 फिर से हिंदी न्यूज, 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी कपशप और 10:10 शुरू होगा रेडियो डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास की आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने

0: की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आपने सुना दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। चलिए दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत

दोस्तों ये तो भक्ति गीत उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआती होगी। दोस्तों अभी आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार। आकाशवाणी का ईटानगर करण FM 103.5।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर से गालो भाषा में समाचार बुलेटिन और अब वक्त है एक नई सुहानी और बूंदों से भी सुबह में आपका दिन रोशन करने का। नमस्कार, सबा खैर और प्रणाम। मैं हूं आपके अपने दोस्त आरजे याजू और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे खास सुबह के कार्यक्रम सुबह सवेरे में सीधे आकाशवाणी ईटानगर अरुण फोन पर। आज हमारे ईटानगर के वादियों ने बादलों की चादर ओढ़ ली है। बाहर रिमझिम बारिश की बूंदे पत्तों पर गुनगुना रही है, ठंडी हवा चल रही है और मिट्टी की वो प्यारी सी खुशबू हर कोने में बिखर चुकी है। ऐसे मौसम में एक हाथ में गर्म चाय का प्याला और दूसरे कान में अरुण एफएम के प्यार से सुबह का मजा ही दुगना हो जाता है ना दोस्तों। मौसम चाहे थोड़ा आलसी हो लेकिन हमारा जज्बा और सेहत का संकल्प ताजा होना चाहिए। तो चलिए इस खूबसूरत बारिश के मौसम में सुरों की पहली बूंद आप तक पहुंचाते हैं। सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, जब बाहर बारिश हो और ठंडी हवा चल रही हो तो घर के अंदर ही योगा करने का एक अलग ही सुकून होता है। बारिश की बूंदों की आवाज खुद एक नेचुरल मेडिटेशन साउंड का काम करती है। इस ठंडे और बरसाती मौसम में बास्त्रे का प्राणायाम जरूर करें। ये शरीर में अंदरूनी गर्मी बनाए रखता है और साइनस या सर्दी जुकाम से बचाता है। घर की बालकनी या खिड़की के पास खड़े होकर वृक्षासना का अभ्यास करें, ये आपके फिजिकल बैलेंस और मेंटल फोकस को बेहतर बनाता है। बरसात के मौसम में जॉइंट्स में थोड़ी स्टिफनेस हो सकती है। कैटकाउ स्ट्रेच आपकी स्पाइन और शोल्डर्स को बिल्कुल खोल देता है। 15 से 20 मिनट का ये ध्यान आपको दिन भर के तनाव से मुक्त रखेगा। चलिए इसी ताजगी को आगे बढ़ाते हैं इस प्यारे से गाने के साथ।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर बाहर बारिश है तो मॉर्निंग वॉक या वर्कआउट मिस हो गया, लेकिन फिट रहने के लिए मौसम नहीं इरादा चाहिए। अगर आप बाहर वॉक पर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही एक शानदार वर्कआउट रूटीन बनाएं। अपने कमरे या लिविंग रूम में एक जगह खड़े होकर 5 मिनट स्पॉट जॉगिंग करें, ये आपके हार्ट रेट को तुरंत बूस्ट करेगा। अगर घर में सीढ़ियां हैं तो 5 से 10 मिनट उन्हें चढ़े और उतरे, ये एक बेहतरीन कार्डियो और लेग वर्कआउट है। कोर स्ट्रेंथ के लिए दोस्तों 30-30 सेकंड के 3 सेट प्लैंक करें और साथ में 15 से 20 स्टेशनरी लंजेस लगाएं। मौसम चाहे कितना भी ठंडा या आलसी क्यों ना हो, 15 मिनट का ये इंडोर सेशन आपके मेटाबॉलिज्म को पूरा दिन एक्टिव रखेगा। और अब आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी शानदार।

दोस्तों आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ सुबह सवेरे में और अब वक्त है बरसात के मौसम में सेहतमंद रहने की खास नुस्खा का। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है डाइजेशन और इन्फेक्शन के लिहाज से उतना ही सावधानी की मांग करता है। इस मौसम में इन बातों का खास ख्याल रखें। सुबह अदरक, तुलसी, काली मिर्च और लौंग का उबला हुआ गर्म काढ़ा या चाय पिए। ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और सर्दी खांसी से बचाता है। बरसात के दिनों में पानी हमेशा उबाल कर या अच्छे से फिल्टर करके ही पिए ताकि वाटरबोर्न डिजीज से बचा जा सके। पकौड़ों का मन जरूर करता होगा पर कोशिश करें कि ताजा बना गरम और हल्का भोजन ही ले, जैसे सूप, दाल और गरम खिचड़ी। बरसात के मौसम में पैरों को गीला ना रहने दें। घर आते ही पैरों को अच्छे से धोकर सुखा ले ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो।

दोस्तों, उम्मीद है सुबह सवेरे के साथ आपकी ये रिमझिम बारिश वाली सुबह और भी खुशनुमा और ऊर्जावान बन गई होगी। खुद को गर्म रखिए, सुरक्षित रहिए और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाइए। अब आपके इस आरजे को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी जानगर अरुण एफएम, जहां हर पल घुलती है संगीत और अपनेपन की मिठास। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे आपातानी भाषा में समाचार।

जंगलों और बहता पानी की लहरों पर पड़ती है तो दिल में एक नया जोश और नई उम्मीद जागती है। सुबह का ये वक्त सिर्फ नींद से जागना नहीं बल्कि नई जानकारियों से खुद को एनरिच करने का होता है। हमारे इस सफर में हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन संगीत, इतिहास के अनमोल पन्ने और हमारे राज्य विदेश की तारों ताजा खबरें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास के झरोखे में और देखते हैं कि 31 अगस्त के दिन दुनिया भर में क्या कुछ खास हुआ था।

31 अगस्त का दिन विश्व इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। आइए नजर डालते हैं दुनिया की कुछ बड़ी घटनाओं पर। दोस्तों, आज ही के दिन साल 1957 में फेडरेशन ऑफ मलाया ने ब्रिटिश राज से पूरी आजादी हासिल की थी। इस दिन को मलेशिया में हारी मर्देका यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 31 अगस्त 1980 को पोलैंड के गंस्क में मजदूरों ने समझौता किया और लेच वालेसा की नेतृत्व में सोलिडारनोस ट्रेड यूनियन बनी, जिसने आगे चलकर पूरे ईस्टर्न यूरोप में लोकतंत्र की लहर पैदा की। आज ही के दिन 1997 में ब्रिटेन की मशहूर प्रिंसेस डायना का पेरिस में एक दुखदायी कार दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके सामाजिक कार्यों और सम्मान को दुनिया हमेशा याद रखती है। बच्चों की मॉडर्न एजुकेशन मेथड को विकसित करने वाली महान इटालियन शिक्षावादी डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी का जन्म आज ही के दिन 1870 में हुआ था। तो दोस्तों, इतिहास के इन ग्लोबल पन्नों के बाद आइए इस सुहाने मौसम में सुनते हैं एक दिलचस्प नगमा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। अब आइए लौटते हैं अपने देश भारत की तरफ और देखते हैं 31 अगस्त को हमारे इतिहास में कौन सी प्रमुख किस्से दर्ज है। पंजाब और हिंदी साहित्य की महान लेखिका और कवियात्री अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। पार्टीजन के दर्द पर लिखी उनकी कविता आज अखान वारिस सानू और नोबल पिंजर साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। 31 अगस्त 1952 को आजाद भारत की सरकार ने अंग्रेजों के बनाए हुए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को पूरी तरह रद्द किया था। इसी दिन को हमारे देश में विमुक्ता जनजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1956 में आज ही के दिन राष्ट्रपति जी ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन का रास्ता साफ किया। भारतीय क्रिकेट टीम के शुरुआती तेज गेंदबाजी अटैक के अहम हिस्सा जवागल श्रीनाथ का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था, जिन्होंने कई सालों तक मैच विनिंग प्रदर्शन किया। तो दोस्तों इतिहास की बात, वक्त हुआ है संगीत की धुन में डूबने का। लीजिए, आनंद लीजिए इस अगले खूबसूरत गीत का।

स्वागत है एक बार फिर से मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में अरुण एफएम पर। दोस्तों अब वक्त है आज की ताजा खबरों पर नजर डालने का जो छाई हुई है आज के द अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य पृष्ठ पर। फेक रुपीज 500 नोट्स पर 10 साल की सजा। कानून और अदालत ने नकली करेंसी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 500 रुपए के नकली नोट छापने के जुर्म में एक महिला को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स रिन्यूड होप। बॉर्डर इश्यू पर भारत और चाइना के बीच चल रही बातचीत ने नई उम्मीद बांधी है। सीमा पार शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद आगे बढ़ रहा है जो हमारे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टक्सिंग लाइमकिंग रेसिडेंट फेसिंग पुअर रोड मोबाइल कनेक्टिविटी। अपर सुबनसिरी की सीमावर्ती इलाकों टक्सिंग और लाइमकिंग के स्थानीय निवासियों को खराब सड़क और मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कनेक्टिविटी जल्द ठीक करने की मांग की है। एल नीनो में हिट सिचुएशन। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो के असर से आने वाले दिनों में मौसम के पैटर्न और कृषि स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है जिसके लिए सावधानी बरती जा रही है। ये थे आज की बड़ी सुर्खियां। आइए अब सुनते हैं एक और शानदार नगमा।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हमने रिमझिम बारिश के बीच दुनिया और देश के इतिहास को समझा और साथ ही आज के अखबार की तारों ताजा खबरों पर नजर डाली। उम्मीद है आपका सफर हमारे साथ ज्ञानवर्धक रहा होगा। अपने दिन को खुशनुमा बनाइए और इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाइए। अब आपके आरजे याजू को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ, क्योंकि अभी और भी प्रोग्राम्स बाकी है। दोस्तों ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। कहीं मत जाएगा, अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से तागिन भाषा में समाचार बुलेटिन और अब समय हुआ है यादों के जरों के खोलने का, सुनहरे दौर के नगमों में खो जाने का और हमारे मौसम का हाल जानने का। नमस्कार, आदाब और सुप्रभात। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार में। दोस्तों, पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग होती है। यह सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है, वो दौर जब हर बोल में शायरी थी और धुन में रूह थी और हर आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। आज जब बाहर रिमझिम बारिश की बूंदें गिर रही है, हवा में ठंडक है और पहाड़ियों पर बादल तैर रहे हैं, तो ऐसा मौसम में लता जी, रफी साहब, मुकेश जी और किशोर दा के गीत दिल को एक अनोखा सुकून देता है। तो बस अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, चाय की चुस्कियों के साथ आराम से बैठिए और आइए शुरू करते हैं हमारा ये खूबसूरत सफर। सबसे पहले सुनते हैं सुनहरे दौर के ये बेहतरीन एवरग्रीन नगमा।

दोस्तों संगीत की सुहाने सफर के साथ चलिए अब जान लेते हैं आज के मौसम का मिजाज। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ईटानगर द्वारा जारी किए गए ताजा बुलेटिन के मुताबिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में आज मौसम कैसा रहने वाला है, आइए विस्तार से समझते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, दिन भर रुक रुक कर हल्की सी मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। ईटानगर में आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। बरसात के चलते सुबह के समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 से 92% के बीच बनी हुई है, जिससे हवा में काफी नमी और ठंडक महसूस हो रही है। हवा पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिशा से 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, तो अगर आप आज घर से किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो छतरी और रेनकोट साथ रखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इसी खूबसूरत मौसम के नाम करते हैं एक और लाजवाब क्लासिक गीत। ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: आपका स्वागत है एक बार फिर से सादा बाहर में। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आईएमडी ईटानगर के अनुसार पूरे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के मौसम के विस्तार पूर्वक विवरण पर। पश्चिमी जिले जैसे तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों, विशेषकर तवांग और बोमडिला में ठंड बढ़ गई है। यहां घना कोहरा और हल्की सी मध्यम बारिश के आसार है। विशेषकर बालुकपुंग, बोमडिला, तवांग हाईवे पर चलने वाले वहां चालकों और को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि कम विजिबिलिटी और स्लिपरी रोड्स सफर को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। जीरो वैली, दापोरिजो और कोलोरियांग के इलाकों में आकाश में घने बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर गरज के साथ तेज बौछारें का अनुमान है। जीरो में सुबह का तापमान काफी ठंडा दर्ज किया गया है। पासीघाट, आलोंग और रोइंग के प्लेन तथा फुटहिल इलाकों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नदियों और नालों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। तेजू, नमसाई और चांगलांग बेल्ट में आमतौर पर बादल छाएंगे और इंटरमीडिएट शावर्स यानी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। नमसाई और फुटहिल एरियाज में दिन में हल्की उमस महसूस हो सकती है। आईएमडी और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहाड़ी रास्ते पर सफर करने वाले सभी मुसाफिरों को सलाह दी है कि लैंडस्लाइड प्रोन स्ट्रेचेस पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और तेजी से बहती पहाड़ी झरनों के पास रुकने से बचें। मौसम की इस विस्तारित जानकारी के बाद आइए एक बार फिर लौटते हैं सुरों की सुनहरी दुनिया में और सुनते हैं एक ऐसी धुन जो हर दिल को छू लेती है।
3: लेटेस्ट

दोस्तों, इन पुराने गीतों में वाकई एक ऐसा जादू है जो वक्त को जैसे वही रोक देता है। उम्मीद है सदाबहार के इस सफर ने आपके दिल को ताजगी और मौसम की जानकारी ने आपके दिन को सुरक्षित बनाने में मदद की होगी। घर पर रहिए, चाय की लुफ्त उठाइए और इस रिमझिम सुहाने मौसम में पुराने नगमों का आनंद लेते रहिए। अब आपके संगीत प्रेमी दोस्त आरजे याजू को दीजिए अगले कार्यक्रम तक के लिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ, जहां हर पल घुलती है दिलों को छू लेने वाली मीठी आवाज। तो दोस्तों, ये आकाशवाणी

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डुमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान

0: जापान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें अर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज

0: छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-03-3104-8-0111-03-3144। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान। 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को

0: पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत। जनसत्ता की खबर है, पत्र लिखता है भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले दो माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत। चार विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची। सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बीजीएल विस्फोटक का डंप जब्त। राजस्थान पत्रिका की खबर है, देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Elishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग से प्रसारित केंद्रीय समाचार बुलेटिन, और अब समय हुआ है ज्ञान विचार और रोचक बातों से सजे हमारे खास कार्यक्रम का। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल शो हेलो ईटानगर। दोस्तों जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है अपने दायरे को बढ़ाना, दुनिया को नए नजरिए से देखना और दूसरी संस्कृतियों और लोगों को समझना। हमारे अरुणाचल में जैसे हर पहाड़ी और हर नदी और हर जनजाति की अपनी एक अनोखी कहानी और धरोहर है, ठीक वैसे ही इस विजुअल दुनिया के हर कोने में अनमोल विरासत छुपी हुई है। आज 31 अगस्त का दिन पूरी दुनिया में एक बेहद अहम रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी अफ्रीकन मूल के लोगों के सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आज हेलो ईटानगर में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और तोड़ेंगे उन पुरानी धारणाओं को जो अक्सर हम पर्दे पर देखते हैं। लेकिन इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और रोशन गीत के साथ।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, जब भी हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो आमतौर पर फिल्मों या मीडिया की वजह से दिमाग में क्या तस्वीर आती है? घने जंगल, सफारी या फिर गरीबी और संघर्ष। लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे और बेहद खूबसूरत है। हमारा आज का विषय है बियॉन्ड स्टेरियोटाइप्स, अंडरस्टैंडिंग अफ्रीका एंड इट्स पीपल। अफ्रीका कोई एक अकेला देश नहीं है, बल्कि ये 54 देशों का एक विशाल महाद्वीप है। यहां 2000 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और हजारों विविध एथनिक ग्रुप्स और संस्कृतियां यहां आपस में रची बसी है। चिनाओ अचीबी, वोले सोयिंका और चिमामंडा ngozi अदिची जैसे लेखकों ने विश्व साहित्य को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बाहर के लोग अक्सर बिना जाने एक जैसी धारणा बना लेते हैं, ठीक वैसे ही अफ्रीका को भी एक ही फ्रेम में देखना गलत है। हर देश, चाहे वो नाइजीरिया हो, केन्या हो, घाना हो या इजिप्त, अपनी अलग तहजीब और चमक रखता है। इस अनोखी विविधता को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं एक और शानदार नगमा।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका को ही कहा जाता है। विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का योगदान ऐतिहासिक रहा है। एंशिएंट इजिप्ट और टिम्बुक्तू के विश्वविद्यालय ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र थे। मेडिसिन, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद यहां रखी गई थी। आज हम जिस जैज, ब्लूज, रेगे, रॉक एंड रोल, हिप हॉप और मॉडर्न पॉप म्यूजिक को पसंद करते हैं, उन सबकी जड़ें अफ्रीकन रिदम्स और उनके मूल संगीत से जुड़ी हुई है। ड्रमिंग पैटर्न्स और सोल म्यूजिक ने पूरी दुनिया के दिल को जीता है। आज अफ्रीका दुनिया का सबसे यंग कॉन्टिनेंट है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी, मोबाइल बैंकिंग इनोवेशन और स्पेस साइंस में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा 31 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट मनाने का मकसद यही है कि हम उनके अधिक संघर्ष, उनके सम्मान और दुनिया को दिए गए अनमोल योगदान को पहचाने और एक भेदभाव मुक्त समाज बनाए। आइए संदेश को आगे बढ़ाते हैं इस बेहद खूबसूरत और प्यारे गीत के साथ।

0: दोस्तों, हेलो ईटानगर का मकसद हमेशा यही रहता है कि हम रोज कुछ नए सीखें, नए सोच अपनाएं और दुनिया के प्रति अपनी समझ को और गहरा करें। इंसान चाहे किसी भी रंग, नस्ल, भाषा या भौगोलिक छोर का हो, जब हम एक दूसरे के इतिहास और संस्कृति का आधार करते हैं, तभी ये दुनिया सच में खूबसूरत बनती है। उम्मीद है आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा और अफ्रीका के बारे में एक नई दृष्टि मिली होगी। अब समय हो चला है आपके इस दोस्त को विदा लेने का, लेकिन ज्ञान और संगीत का ये कारवा यहाँ
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीयू के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए वे भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एससीयू सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है, वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार जन सुनवाई शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग

दोस्तों, दिल्ली से राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन के बाद आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर ट्रांसमिशन का मजा अब डबल होने जा रहा है। मैं हूं आपके अपने आरजे याजू और हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ इस सुहाने सफर में। अब घड़ी ने बजा दिया है सिनेमा और एंटरटेनमेंट के सितारों वाला घंटा। जी हां, वक्त हो चला है आपके चटपटे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। आज बॉलीवुड की गलियारों में ऐसी जबरदस्त हलचल है जिसका जिक्र हर तरफ हो रहा है। थिएटर्स में चिड़ी बड़ी टक्कर, स्लीपर हिट्स का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार, ओटीटी रिलीजेस का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड और इंडस्ट्री के अंदर चल रहे ताजे विवाद, सब पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही सुनेंगे कुछ सुपरहिट चार्टबस्टर्स। तो चाय का कप लीजिए, आराम से बैठिए और शुरुआत करते हैं इस पहले धमाकेदार गीत के साथ।

दोस्तों अब सीधे चलते हैं सिनेमा घरों के टिकट काउंटर पर, यानी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी यश, कियारा अडवाणी और नयनतारा स्टेलर मेगा एक्शनर टॉक्सिक थिएटर में धूम मचा रही है। रिलीज के पहले चार दिनों के अंदर ही इसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर तूफानी ओपनिंग दर्ज की है। हिंदी बेल्ट में यश का मास स्क्रीन प्रेजेंस व्यूअर्स को खींच रहा है। इंडिपेंडेंस डे वीक पर आई इमरान हाशमी और दिशा पतानी की रोमांटिक एक्शन ड्रामा आवारा पंतू ने बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ का मार्क क्रॉस करके सॉलिड हिट का टैग हासिल किया है। इमरान के इंटेंस कैरेक्टर और साउंड ट्रैक ने पुरानी यादें ताजा कर दी है। वहीं ट्रेड सर्कल्स में सबसे बड़ा चमत्कार रहा नीम करोली बाबा का कंटेक्स पर बनी छोटी फिल्म हनुमान अंत। सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म डे 1 पर 10 लाख पर खुली थी, लेकिन मैसिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इसने सिंगल डे पर 6 करोड़ से ऊपर की छलांग लगाई और 18 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ कलेक्शन करके 800 से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। सो इस जबरदस्त बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बाद सुनते हैं एक और गाना।

दोस्तों आकाशवाणी ईटानगर पर आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी गपशप। अब आते हैं हमारे मूवी रिव्यू और एनालिसिस सेगमेंट पर।

सनी देओल और प्रीति जिंटा की बंटवारा 1947 पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बनी ये एक्शन ड्रामा फिल्म इमोशनल इंटेंसिटी डिलीवर करती है। सनी देओल का हाई वोल्टेज डायलॉग डिलीवरी फैंस के लिए ट्रीट है, जबकि प्रीति जिंटा का कमबैक परफॉर्मेंस सॉलिड है। सो पर्सनली मैं ये मूवी आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। दूसरा है खोसला का घोसला 2। अनुपम खेर, रणवीर शौर्य और परवीन दाबस के साथ आई ये कल्ट कॉमेडी सीक्वल दिल्ली के मॉडर्न रियल स्टेट स्कैम्स और डिजिटल फ्रॉड्स पर शार्प सटायर करती है। राइटिंग शार्प है और फैमिली व्यूअर्स के लिए रिलेटेबल वॉच है। तो दोस्तों रिव्यू तो हो गई, आप सुनिए ये बेहतरीन गीत।

दोस्तों चलिए जानते हैं ओटीटी पर अब क्या चल रहा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ट्रेलर डायल 1975 इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में है। इमरजेंसी के दौरान एक मिस्टीरियस कॉल सेंटर और कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर बेस्ड यह ट्रेलर सस्पेंस लवर को पसंद आ रहा है। वहीं पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा स्टारर इमोशनल सटायर ड्रामा ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के साथ व्यूअर्स का दिलों को छू रहा है। मिड बजट क्राइम और सस्पेंस ट्रेलर्स डायरेक्ट स्ट्रीमिंग पर प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स ट्रेलर्स को बिंज फॉर्मेट में देखना ज्यादा पसंद कर रही है। तो सुनिए ये प्यारा सा वायरल ट्रैक अप।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, अरुण एफएम पर आपका और हमारा साथ बना हुआ है और अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका पूरा सोशल मीडिया जिक्र कर रहा है, बॉलीवुड कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। एक्टर राजपाल यादव के पुराने फाइनेंशियल लाइबिलिटी और लोन डिफॉल्ट केस पर आई नई कोर्ट अपडेट्स पर फिल्म फ्रेटर्निटी के कई बड़े प्रोड्यूसर्स आगे आकर लीगल सेटलमेंट्स में सपोर्ट करते नजर आए। वहीं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन और नेशनल प्रोड्यूसर के बीच 8 वीक मैंडेटरी थिएटरिकल विंडो को एनफोर्स करने पर मीटिंग हुई है ताकि थिएटर्स के टिकट सेल्स पर डिजिटल ड्रॉप का असर न पड़े। सो इस गर्मा गर्म चर्चा के बीच थोड़ा सुकून लाते हैं इस अगले गीत के साथ।

दोस्तों हमारे फिल्मी ट्रांसमिशन आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं आने वाले फेस्टिव रिलीजेस पर। विजय सलगांवकर का केस अब आखिरी और फाइनल मोड़ पर आ रहा है। दृश्यम 3 का टीजर सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड व्यूज हासिल कर चुका है। वहीं बिग स्क्रीन थिएटरिकल रिलीज के रूप में मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को थिएटर्स में उतरने के लिए रेडी है, जिसका क्रेज ओटीटी फैंस में पीक पर है। वहीं करीना कपूर और समांता की एक्शन और गांधारी हार्डकोर सर्वाइवल एक्शन फिल्म की मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो चुकी है, तो लाइनअप एकदम सॉलिड है। आइए सुनते हैं ये और एक गीत।

0: दोस्तों संगीत की बात करें तो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में इस वक्त क्लासिक बैकग्राउंड स्कोर्स और एकॉस्टिक ऑर्केस्ट्रेशन का दौर वापस आ रहा है। फिल्म मेकर्स अब सिंथेटिक ऑटो ट्यून ट्रैक्स की जगह लाइव ऑर्केस्ट्रा, सरांगी और सितार जैसे एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट को बैकग्राउंड टीम्स में शामिल कर रहे हैं। आवारापन टू और टॉक्सिक के बैकग्राउंड स्कोर्स ने थिएटर्स में गूज़बम्प्स क्रिएट किए हैं। इसी म्यूजिकल टेक्सचर को फिल करते हैं इस सोलफुल ट्रैक के साथ।
1: I know, ba.

दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव फिल्मी सेशन बहुत पसंद आया होगा। फिल्मी गपशप का ये सेगमेंट यहाँ पूरा होता है, लेकिन ट्रांसमिशन यही नहीं थमता दोस्तों। आगे हमारे पास और भी दिलचस्प कार्यक्रम और आपका अपना इंतजार किया हुआ सिलसिला रेडियो डिमांड भी आगे आने वाला है। तो रेडियो सेट को ट्यून रखिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी आरजे। ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। तब तक के लिए आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से केंद्रीय समाचार बुलेटिन और अब समय हो चला है हमारे सुबह के ट्रांसमिशन के आखिरी और सबसे पसंदीदा हिस्सा का। नमस्कार और सुप्रभात, मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। अब वक्त है अपने मनपसंद प्रोग्राम का रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों कल के हमारे ट्रांसमिशन में वक्त की कमी के चलते कुछ रिक्वेस्ट शामिल नहीं हो पाई थी, साथ ही कल आने वाले दिन के लिए भी कई दोस्तों ने मैसेजेस किए थे, पर जैसे कि हमारा नियम है आपकी हर फरमाइश हमारा लिए अहम है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कल की उन बाकी बचे फरमाइशों से। पहली फरमाइश आई है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम से, हमसे जुड़े हैं सुनीता अमोल और बाइकोन। उन्होंने सुनने की गुजारिश की है ध्वनि भानुशाली का गाना ले जा रे। लीजिए पेश है ये गीत विशेष रूप से आप दोनों के लिए।

मोहब्बत का दिलचस्प गीत तेरे दिल में मुझे रहना है चुना है। पूजा जी ने ये गीत खास तौर पर अपने बॉयफ्रेंड प्रेम बोरो के लिए डेडिकेट किया है। सो प्रेम जी, लगता है आपके दिन की शुरुआत आज काफी खास होने गई है। आप दोनों की ये समझ और रिश्ता यूं ही बना रही है। लीजिए, सुनते हैं ये गीत।

0: डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, हम चलते हैं बोकाखात आसाम की तरफ। यहां से हमें एक साथ कई दोस्तों के खत मिले हैं। मैसेज बोकाखात के हमारे श्रोताओं का ये सिलसिला देखकर सच में बेहद खुशी होती है कि रेडियो का ये सफर कितनी खूबसूरती से पड़ोसी राज्य को जोड़ रहा है। बोकाखात से विदिशा गोस्वामी जी की पसंद है फिल्म बचना ए हसीनों का गीत खुदा जाने। और दूसरा मैसेज आया है और की गोस्वामी ने चुना है रूहानी नगमा अर्जिया।

0: दोस्तों, अगला रिक्वेस्ट हमारी नियमित और लॉयल लिसनर हर्षित गोस्वामी जी ने डिमांड की है। फिल्म अंग्रेजी मीडियम का एक गीत जिसका नाम है एक जिंदगी, और फिर उसके बाद रुमित कार्डांग जो बोकाकात आसाम से ही है, उन्होंने भी पार्टी मूड सेट करते हुए रिक्वेस्ट किया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोकाघाट की आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया। लीजिए, सुनिए आपका ये गीत।
1: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों, फरमाइशों का ये कारवा आगे बढ़ता है लालू की तरफ, जहां से सत्यजीत ने हमें संदेश भेजा है। उनकी पसंद है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का सुनहरा नगमा दिल तो है दिल। इसके बाद जोनाई देमा जी आसाम से जुड़े हैं विमल बासुमतारी जी। विमल जी ने फिल्म राजा का गाना नजरे मिली दिल धड़का चुना है और इसे डेडिकेट किया है अपने सभी दोस्तों के साथ साथ आकाशवाणी की पूरी आरजे टीम को। विमल जी, आपका ढेर सारा आभार। एक आरजे के लिए श्रोताओं का ये सम्मान सबसे बड़ा उपहार है। और कल की पेंडिंग लिस्ट की आखिरी गाना रिक्वेस्ट किया है हमारे डेली लिस्नर कुमार ने, जो असम से है। उनकी फरमाइश है फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का गीत आते जाते जो मिलता है।

0: एक कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़ी है, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

दोस्तों, अब समय हुआ है आज के ताजा संदेश और फरमाइशों का शामिल करने का। माजुली आसाम के खूबसूरत नदी द्वीप से देवशीष हजारिका ने फरमाया है एनर्जेटिक ट्रैक छैया छैया फिल्म दिल से।

0: दोस्तों गोलाघाट असम से हमारे डेली लिसनर ट्रायो रोमेश रूनू और लक्की ने मिलकर फिल्म सफर का अमर गीत चुना है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। किशोरदा की आवाज में ये गीत वाकई जिंदगी की गहराई को बयान करता है।
1: सारेगामा कारवां।

0: दोस्तों वक्त की पाबंदी के चलते मुझे ये गाना बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। घड़ी की सुइयां बताती है कि हमारी मॉर्निंग ट्रांसमिशन का समय यही पूरा होता है, इसीलिए हम आगे और गाना शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इन दोस्तों की फरमाइश आज अधूरी या बाकी रह गई है। आप निराश मत होइए, आप कल दोबारा अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारे ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गई रते और तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिजिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिजिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल राजधानी बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: इससे पहले उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने दिखाया है कि उज़्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में

0: declined over the past 24 hours. In view of the possibility of a further rise in water levels, the administrations of West Champaran, East Champaran, Saran and Gopalganj districts have been put on alert. Odisha faces another spell of heavy to very heavy rain today, with the weather system over the northwest Bay of Bengal continuing to influence the state. The IMD has forecast extremely heavy rainfall at isolated places today, with a red warning in force for Bargarh and orange warnings for several districts of western Odisha. President Draupadi Murmu will address the combined convocation of National Institute of Fashion Technology in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will be conferred degrees on the occasion. Union Minister for Textiles Giriraj Singh, Secretary Ministry of Textiles Neelam Shami Rao will also grace the occasion. Union Home Minister Amit Shah has remembered former President and Bharat Ratna Dr. Pranab Mukherjee on his death anniversary. In a social media post, Mr. Shah noted that the former President was an ace administrator and scholar who exemplified a firm commitment to the nation and its constitutional values throughout his decade-long journey in public life. And in women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in a dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium last night. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से. और आरजे याजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे के कारोबार मुझे सौंपने के लिए. श्रोता, हमारी दूसरी प्रसारण सभा के साथ है प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता रितेश सिंह और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी. और मैं आपकी रेडियो साथी कविता आपका इस दूसरे प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत करती हूं. और आइए झटपट से नजर डालते हैं हमारे आज के इस दूसरे प्रसारण में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की ओर. थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर. 11:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज. 12:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. 12:10 पर आप सुन पाएंगे चंद गाने पर नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग से. 12:30 पर आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीतमाला. 1:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. प्रोग्राम हेलो फरमाइश आप सुन पाएंगे 1:10 पर. और 2:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज. एवं दोपहर समाचार 2:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s. न्यूज हेडलाइंस आप सुन पाएंगे 2:58 पर. 3:00 आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का प्रोग्राम. और 3:15 पर आप सुन पाएंगे तायक हमती श्रोताओं का प्रोग्राम. 3:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने. वांछो श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 3:40 पर. 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स. 4:00 आप सुन पाएंगे द मिसमी श्रोताओं का समाचार. 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने. 4:20 पर आप सुन पाएंगे तंगसार श्रोताओं का समाचार. तो ये थी हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी. और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम फिल्मी लहर और सुनते हैं

आप श्रोता सुन रहे थे गोलमाल अगेन का ये गाना नीरज श्रीधर एवं शुभकृति कक्कर के आवाजों में। आप सुन रहे थे हमारे साथ प्रोग्राम फिल्मी लहर। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्न मेलोडीज। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है।

0: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his two-day visit to Kyrgyzstan. 4 delegations working with India in various fields were present on the occasion. After this, Prime Minister Modi paid floral tributes to Mahatma Gandhi at his statue situated at the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, member states. These include meetings with the heads of state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow, on the second and final day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. In his departure statement on Saturday, Mr. Modi said he is looking forward to advancing India's vision for the region based on security, connectivity and opportunity. He also said India will work with SCO members towards a region free from terrorism, separatism and extremism. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games. The Indian Navy today commissioned INS Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class, at Naval Dockyard, Mumbai. Speaking at the commissioning ceremony, Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, said that amid a period

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: समझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका।
1: आपने सुना नेहा कक्कर एवं टोनी कक्कर के आवाज में ये गाना। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का लास्ट गाना बी प्राक की आवाज में।

0: श्रोता दोस्तों, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स अब यहीं समर्थते हैं। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, घमंड ना करना जिंदगी में। तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आप हमारे साथ बने हुए हैं फौजी भाई बहनों के प्रोग्राम गीत माला में, और गीत माला में आइए सुनते हैं ये पहला गाना।

सोनू निगम, मिथुन, मनोज मुंतासिर की आवाज में आप सुन रहे हैं बॉर्डर 2 का ये गाना। आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम गीतमाला में।

उदित नारायण की आवाज में आपने सुना प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं फौजी भाई बहनों के प्रोग्राम गीतमाला में, और आगे आइए सुनते हैं फिल्म जिद्दी का ये गाना हरिहरन की आवाज में।

0: इसी के साथ ही प्रोग्राम गीत माला भी यहीं संपन्न होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों

नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते। हेलो फरमाइश ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: जी सर, सबसे पहले तो सर मेरी ओर से सभी आकाशवाणी परिवार को सर रक्षाबंधन और भुजलिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: सर मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
1: जी सतीश जी, और रक्षाबंधन की क्या तैयारी चल रही है?
2: बिल्कुल सर जी, फुल तैयारी है। और हमारा ये पर्व जो होता है सर जी, तो बहन और भाई का एक मिलन और पवित्र त्यौहार होता है। इसमें हम भाई बहन का इंतजार करते हैं कि कब हमारी बहनें आ जाएं और हमारी कलाई पे राखी बांधे और बहन को हम खुश कर दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सतीश जी, आपके कितने बहनें हैं?
2: सर मेरी सगी सिस्टर नहीं है सर, मतलब मेरे को अच्छा। मेरी बुआ की लड़की लोग राखी बांधती है।
1: ओके ओके जी जी जी।
2: जो सर जिसकी बहनें ना होती तो सर दूसरी जो सिस्टर होती है हमारी, वो सगी बहन भाई जैसा मानती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हम यही चाहते हैं कि भाई बहन का यह पवित्र प्यार और स्नेह जो हमेशा बना रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी जी। हाँ जी, तो आज सतीश जी कहिए कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: सर मुझे गीत सुनना है सर जी, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, ये वाला गीत सुनना सर जी।
1: अच्छा जी
2: जी जी, जी।
1: और किन जी दोस्तों का नाम ले लीजिए
2: सर? सबसे पहले तो आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और हमारे मित्र हैं सर जी, गुड़वंत गड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं उज्जैन से, गौतम राय बोले जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, राजू यादव जी हैं, राजन गंगवार जी है, शाहरुख नूर अंसारी जी है। सर सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा।
1: जी जी, तो सतीश जी एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और आइए सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
2: जी थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते हेलो फरमाइश ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी थैंक यू सो मच मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से
0: जी प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुनाइए कैसे हो आप
1: बहुत बढ़िया हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है आप बताइए आप कैसे हो
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ
1: जी रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन का प्रतीक है प्यार का
0: जी जी जी बिल्कुल
1: जिसमें बहन और भाई का एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है रक्षाबंधन मना लेते हैं
0: जी
1: और एक दूसरे के गिफ्ट देकर खुश भी कर लेते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रेम सिंह जी आपकी कितने बहनें हैं
1: जी मेरे 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा हूँ
0: अच्छा ओके तो बहनें घर पे ही है या फिर कहीं बाहर
1: हाँ बहनें सब अपने अपने घर पे हैं लेकिन 2 बहन तो अभी आ चुके हैं और 3
0: अच्छा,
1: आएंगे
0: अच्छा अच्छा
1: जी और आपको बताऊँ जैसे बहन आती है उनके साथ में बच्चे भी आते हैं ना और जब घर में इतनी रौनक हो जाती है एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है बच्चों की खिलखिलाहट और अलग अलग प्रकार के जब खाना बनता है ना तो
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने तो अपनी बहनों के साथ कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे
1: रेशम की डोरी से प्यार बांधा है बहना ने भाई की कलाई पर ये वाला सॉन्ग सुना दीजिए
0: ओके जी जरूर सुनाएंगे और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे
1: जी सभी दोस्तों को डेडिकेट रहेगा और बहनों को
0: ओके तो प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनते हैं

0: ईश्वेता जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ।
0: ओके, तो आज कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज का गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम से पता नहीं, गाने का भूल से है। जसमती माइया से बोल नंद लाला, राजा की गोरी ने क्यों पाला।
0: ओके, हाँ जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: तेरे तो आपके लिए।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुझे चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, देवजी दास, कंजूसी, अविनाश तेली, बापन आचार्य, सिंधु दास, अमर सिंह साहू, लोकेंद्र वर्मा, सबको।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो सुतापा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना। ओके, धन्यवाद।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पर भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, स्वागत है आपका बहुत बहुत ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: सर जी, शिवा लोहट MP विदिशा से आपका निमेश होता।
0: जी शिवा लोहट जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: मैं बढ़िया हूँ सर जी, सभी सुनने वालों को और आपकी टीम को और आपके पूरे घर परिवार को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, और आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर
0: जी। और रक्षाबंधन की कैसी तैयारी चल रही है शिवा लोहट जी?
1: बढ़िया चल रही है सर।
0: ओके, और बहनें घर पे हैं या फिर बाहर है?
1: नहीं सर, अभी कल ही आएंगे वो।
0: अच्छा, सब कल आएंगे ना। ओके जी जी जी। और कितनी बहनें हैं आपके?
1: तीन हैं सर, तो सबके बच्चे पते हैं ना सर, तो थोड़ा दिक्कत है।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी, तो ठीक है, अच्छी तरह से मनाइए रक्षाबंधन। और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, एक मूवी है आज का अर्जुन।
0: आज का अर्जुन, हाँ जी,
1: उसमें एक गाना है, मेरी प्यारी बहन तेरा क्या कहना।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी पहले मेरी तीनों सिस्टर रहेंगी, तनुजा, रंजीता, संगीता, और हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, अविनाश जी, कल्याण सेन जी, गजराज लोधी जी, और शारदा प्रसाद जी, और

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: जी सर, हम धेमाजी आश्रम से बोल रहे हो, बिमल जुनाई मेसा की सपुरी से।
0: जी बिमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: ठीक है सर, हम अभी दुकान में है, दुकान से फोन कर रहे हो सर।
0: अच्छा जी जी जी, आप बिजी होते हैं फिर भी हमें याद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे मेरा सबसे अच्छा प्रोग्राम है सर, और आपको भी इतना अच्छा लगता है ना, इसीलिए याद करने वाला सोचता नहीं है हम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से याद करते रहिए, हम भी आपको याद करते रहेंगे।
1: कैसा है मौसम उधर सर?
0: बिमल दा, यहाँ पे मौसम अभी अच्छा है, बादल छाया हुआ है, दावरिया से
1: जी। हम लोग का इधर भी धूप होया से।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। प्यार भरा नमस्कार सर जी।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो सर जी।
0: जी गौतम राय बोले जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
1: बस मजे में सर जी, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, मजे में हूँ।
1: हाँ 10-15 दिन से बारिश रुकी है हमारे यहाँ।
0: अच्छा जी।
1: ओके। तो फसल भी अच्छी है। कपास की मेन फसल है वो भी ठीक है।
0: अच्छा।
1: खास करके सोयाबीन है, तुअर भी है। और आकाशवाणी ईटानगर के जो किसान भाई के प्रोग्राम में आते ना,
0: जी जी जी,
1: तो उनकी जानकारी हमें बहुत लाभदायक होती सर जी।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा जान करके कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं किसान भाइयों पर आधारित।
1: जी जी, हमारे अमरावती महाराष्ट्र में बहुत सुस्त पता आज में सुनाई देता सर जी।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
1: खास करके हम नियमित होता है, यानी कि फोन इन कार्यक्रम में लगभग हर कार्यक्रम में फोन नहीं लगाते, ताकि हर श्रोता को मौका मिलना चाहिए।
0: जी हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, दूसरे श्रोताओं को भी मौका देना चाहिए।
1: जी जी जी, जी, जी, जी। हमारा हर फार्मेसी एकता ग्रुप है, तो उनका आप ईटानगर की जानकारी जो फोन इन नंबर है वो हमारे ग्रुप में डालते और उस नंबर को देखते आकाशवाणी ईटानगर पर फोन लगाते। अगर किसी का फोन लगा और उनका कार्यक्रम सुनने में नहीं हुआ तो उनकी रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में डालते ताकि वो सुन सकते सर जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रुप में भी डाल लेते हैं हम रिकॉर्डिंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, सर जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत ही अच्छी बात है ये, तो जिस तरह से हर श्रोता सुन सकते हैं अपने कार्यक्रम को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर टाइम पर जो श्रोता नहीं सुन पाए तो वो ग्रुप में सुनते हैं।
0: ओके जी जी जी
1: जी सर जी जी।
0: तो गौतम राय जी आपको

0: सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी, सभी आकाशवाणी ईटानगर के पूरी टीम को, भाई बहना को, हमारी ओर से भी, और आकाशवाणी ईटानगर सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारी ओर से भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे गौतम जी?
1: चंबल की कसम फिल्म का गाना है सर जी।
0: अच्छा जी।
1: चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे।
0: ओके जी, बहुत ही बढ़िया गीत। और किन साथियों को सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आपके लिए गाना डिलीवर सर जी, और जिन आकाशवाणी ईटानगर के हमारे बहना कार्यरत है उन पर भी ये गाना मेरा डिलीवर है, और हमारा हेलो फरमाइश जेट्टा ग्रुप के सभी साथियों के लिए मेरा गाना डिलीवर सर जी।
0: ओके, तो गौतम जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, धन्यवाद सर जी।
0: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश जांगरे जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
0: परिचय हो जाए।
1: योगेश जांगरे बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
0: जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से
1: जी, आप सभी को, तमाम साथियों को भी।
0: जी जी जी। और क्या तैयारी चल रही है रक्षाबंधन की?
1: तैयारी है भैया, अब बहने तो घर आती हैं जी, शादी हो गए हैं तो।
0: अच्छा अच्छा जी, कितनी बहने हैं आपकी?
1: अब ऐसे तो 7 बहने हैं भैया, ज्यादातर तो अब हम संयुक्त परिवार में रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: तो सभी आएंगे कल?
1: जी जी।
0: अच्छा अच्छा। इस पावन अवसर पर कौन सा फिल्म गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म तिरंगा से सुनवा देंगे, इसे समझो ना रेशम का तार भैया।
0: अच्छा जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के सभी साथियों को डेडिकेटेड रहेगा, और आप लोगों को भी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कॉल करने के

0: हेलो, फरमाइश ईटानगर।
1: परम आदरणीय मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, बहुत अच्छे फ्रेंड वाघरा साहब को मैं शारदा प्रसाद प्रजापति ब्रज रेडियो श्रोता मित्र गोवर्धन रोड मथुरा से करता हूँ सादर प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको शारदा प्रसाद जी।
1: जी,
0: और सुनाइए कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। काफी दिनों के पश्चात एक बार पुनः आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है आकाशवाणी ईटानगर के माध्यम से। मैं बहुत प्रयास किया करता था लेकिन फोन नहीं लगता था
0: जी।
1: मैं बेबस हो जाता था और हताश निराश होकर बैठ जाता था कि आज मेरी वार्तालाप वागड़ा साहब से नहीं हो पाई, मेरा फोन नहीं लगा। और इतना प्रयास करने के ताबड़तोड़ प्रयास करता था लेकिन फोन नहीं लगता था, तो नहीं लगता था। लेकिन आज फोन जब लग गया है तो इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना हर्ष हो रहा है कि मत पूछिए, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमेशा याद करने के लिए जी। कभी कभार ज्यादा व्यस्त हो रहता है फोन लाइन, तो शायद नहीं लग पाता जी।
1: इसीलिए कभी कभी मैंने आपको अपने दिल को तसल्ली देने के लिए फोन कर लेता हूँ पर्सनल नंबर पे, लेकिन उसमें भी कभी कभी निराशा होती है, तो फिर मन मार कर बैठना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, प्रोग्राम के माध्यम से फिर मैं आपको सुन लेता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, आज तो बातचीत हो रही है हम दोनों की, तो सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी, हृदय से धन्यवाद आपको, आकाशवाणी ईटानगर को और सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन का पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और ये भाई बहन का प्यार स्नेह यूं ही बना रहे, इस माध्यम से हम एक बार पुनः अपनी बहनों को वो प्यार, वो सम्मान, वो आदर दे पाते हैं। और हमें तो 12 महीने 365 दिन ही बहनों का सम्मान करना चाहिए और आदर करते हुए उनको यथा उचित स्थान देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सही बात कही आपने शारदा प्रसाद जी। तो इसी पावन अवसर पर कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज आपसे रक्षाबंधन के अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का आप गीत सुना दीजिए।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: ये मैं याद करना चाहता हूँ सर्वप्रथम अपने परम मित्र ओके वाघरा साहब को समर्पित करता हूँ, और याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सर श्री लोकेन्द्र वर्मा, राजू यादव, अविनाश जी,

0: आशुतोष जी हैं, राकेश कुमार जी, पूरन वर्मा और पुष्कर नाथ जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, और इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
1: जी तो शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्ते सर, म रंगापाड़ा सोनितपुर आसाम बाट अमल बसुमतारी बोले रहेका छन्।
0: ओके अमल बसुमतारी दा, कस्तो छ तिमी?
1: म राम्रो छु।
0: राम्रो छ?
1: ओके।
0: अरु
1: मेरो प्रोग्राम में सामेल गरेको छ रे, धेरै धेरै धन्यवाद सर।
0: कल गर्नु लाग्यो, बहुत बहुत धन्यवाद तपाईलाई पनि।
1: मेरो आज छुपा रुस्तम चलचित्रबाट गान सुन्न चाहन्छु।
0: छुपा रुस्तम? ओके। गीत के बोल
1: डेडिकेशन गर्नको सक्छ?
0: गाना का बोल भन्न सक्छ?
1: टाइटल सङ।
0: टाइटल सङ, ओके। हुन्छ हुन्छ।
1: मेरो साथीहरू हुन्छ बिमल बसुमतारी फ्रम धेमाजी आसामबाट, भाइकन मुन्दा फ्रम सराडियो सुनारी आसामबाट, सुनिता बसुमतारी, अञ्जली बसुमतारी, दिनेश शर्मा, शरदद्वारा, निलटपुरद्वारा, रमेश पत्रो, रुनु पत्रो, लकी पत्रो, सञ्जय मुन्दा, गागेरावा, अविनाश तेली, तानुश्री, आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, भगवान सिंह परमार, राकेश गोल्डी, पूरन वर्मा, शिवा लोहार और पुरुषोत्तम कुमार, जहालाल बर्मन सबके।
0: ओके, तो अमल जी, हमारे श्रोता सोच रहे हैं कि ये दोनों आज किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। जी, तो हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हम दोनों ने काफी कोशिश की कि हम नेपाली भाषा में बातचीत करें और अच्छी बातचीत हुई। तो अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: आप श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदा होती हैं भारत के हर जिले में। लेकिन इन कहानियों को दुनिया तक पहुँचाएगा कौन? अब कैमरा आपके हाथ में है और मंच पूरे देश का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, जहां उभरते डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएंगे अपने जिले का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म। शुरुआत 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रूपए का पुरस्कार। प्ले स्टोर या एप स्टोर से वेव्स OTT डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें, माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं, जेम्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम चुनें, अपनी ओरिजिनल वीडियो और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करें। हर कहानी को मिलेगा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच, वेव्स OTT पर।
6: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
7: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी देर में समय हो चला है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचारों का, जिसके तहत आप सुनेंगे 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार। उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ 2:30 पर।

0: areas, the water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. In football, India under-20 men's national team will begin their AFC Under-20 Asian Cup 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dost Lig Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside hosts Uzbekistan and Bangladesh, India enter the qualifiers with the objective of returning to the AFC Under-20 Asian Cup for the first time since 2006. In women's cricket, Bangladesh will take on Indonesia in the Group B match of the Women's T20 Asia Cup in Dubai today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत

0: अति प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
4: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप करुण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
4: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का

0: से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-0481 और 2371-7117।

0: में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिट्टी न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। जी हाँ, हिट्स ऑफ 90s में आज जो आप पहला गाना सुनने जा रहे हैं, इस फिल्म का निर्माण किया था विक्रम भट्ट ने। स्टारर हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी लीड रोल्स पे हैं, और आप समझ ही गए होंगे ये फिल्म है गुलाम। इस फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं कुमार सानू एवं अलका याग्निक की आवाजों में।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में, और ये जो गाना आप प्ले करने जा रही हूँ ये 90 के दशक के सदाबहार रोमांटिक गीतों में से गिना जाता है, जिसमें एक प्रेमी जोड़े की जो है गहरी मोहब्बत और एक दूसरे के बिना न जी पाने की जो फीलिंग्स है बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। जी हाँ, ये गाना है चाह है तुम्हें चाहेंगे, जो कि फिल्म जीना मरना तेरे संग से है।

हिट्स ऑफ 90s की अगली पेशकश है फिल्म परदेश से, जिसकी आवाज दी है जिसे कुमार सानू, और ये फिल्म बनी थी 1997 में। गीतकार आनंद बख्शी का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s और हिट्स ऑफ 90s में अब जो आप गाना सुनने जा रहे हैं ये 90 के दशक की एक क्लासिक धुन है जिसमें बांसुरी वायलिन और मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। इस गाने की आवाज दीहे कुमार सानू और लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

श्रोता दोस्तों, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s को समेटने का वक्त आ गया है और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस। उसके बाद आप सुन पाएंगे 3 बजे मिस मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम और हम लौटेंगे 3:30 पर प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने। जी हाँ, बॉलीवुड अपडेट में आइए चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की दुनिया की और आइए जानते हैं क्या कुछ है खबरें। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। माधुरी ने अपनी एक्टिंग, ग्रेस और डांस से हमेशा फैंस का दिल जीता, लेकिन एक फिल्म में उनके इंटीमेट सीन पर खूब बवाल हुआ था। वहीं दूसरी खबर है करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेघना गुलजार के फिल्म में दोनों पुलिस अफसर बने हैं और एक लापता लड़की का केस कहानी बदल देता है। मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है। हालांकि फिल्म को कई सारे कट्स के बाद रिलीज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में 35 सेकंड का इंटीमेट सीन हटा दिया गया है और गाली गलौज को भी बदला गया है। 1.8 करोड़ में बनी हनुमान अंश की कमाई से डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिनना बंद कर दिया है और फिल्म के सोच बढ़ रहे हैं।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और साथ ही सुन रहे हैं आप हिंदी फिल्मी गाने बॉलीवुड अपडेट में। आइए खबर अगली सुनते हैं। टेलीविजन और फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी मां बनने वाली है। उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की। वो 40 की उम्र में अपने पहले बेबी का वेलकम करेंगी। यश की मां पुष्पा अरुण कुमार ने केजीएफ से पहले यश कौन था वाले पुराने बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यश पहले ही 5 हिट फिल्में दे चुके थे। उन्होंने यश की मेहनत, संघर्ष और केजीएफ से पहले की सफल फिल्मों का जिक्र किया। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने निर्देशन में बन रही ये मशहूर फ्रेंचाइजीज अपनी तीसरी और आखिरी किस्त के साथ बड़े पर्दे पर अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि फिल्म के बाकी स्टारकास्ट को इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी रकम दी गई है। तो इसी के साथ ही आज के लिए हमारा ये प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट यही हम समेटते हैं और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।

श्रोता दोस्तों, आपने सुना आतिफ असलम की आवाज में टाइगर जिंदा है फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं दिल का रिश्ता फिल्म से ये गाना अलका याग्निक एवं कुमार सानू की आवाजों में।

श्रोता दोस्तों, दिल का रिश्ता फिल्म का ऐसी गाने के साथ ही हम प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गानों का आज के लिए यही समेटते हैं और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे इधर निस्मी श्रोताओं का समाचार।

0: कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर कुयाला पुची जासोर नुखेंगे आसोली नी ऐतनिची ईदुमिस्मी आहुला की जी दरगालम्बो तार यह है इंडिया माची कल्चरल ईचुमाने तोगे गुमदाने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में ओना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निप्ट माचे निग्राज प्राप्यो जा कॉन्वोकेशन आखागा माचे चाहे महो लगाने तापु आजुए इंडस्ट्री में एचारी ठोचे को इमु जोका हागादा लाइबादा आहोगा अवताची आतोचे दोदने तापु मा अजिताचिला निप्ट मा आजो अहितया में महानतनाबने इनेगा जा थुवे तोवे दोने किसा तापु एंदो उद्यमा जिम ना लाइबादा आहोगा आ निप्ट मा एजारी ब्राका पिहु बुशी आजो अहितया इगा माचे ये हो मगा परसेंट है या को लंबदा ने प्रेसिडेंट में लगाने फैशन इंडस्ट्री माचे जोता है पियानो या को लंबर में इगादा लाइबादा आहोगा इंडिया में योता दत्ता आदिका एम मा पियानो तापु है आयोजिका उचिता ने प्रेसिडेंट में लगाने इंडिया में वहाँ आयोजित होने इंडिया तापु है आजिका जचिता लाइबादा आहोगा इंडिया आदिका एम में हुलियो निप माचे फैशन आजो आहिता में ओना डिग्री आजो पर राय पता ला होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में बुने उज्बेकिस्तान माचे ताशकंद आतिको ने प्रेसिडेंट सबकत मिर्जी योयब को चिचगा महो आतिबु पोचे ला प्रगे होलो के एमओयू आजो अंबगा तिका पता आ होगा यूरेनियम मने जो नमा लिवा एधने हिंदी मने संस्कृत मालिबा स्पोर्ट्स टाउन नापागे उखो जोता उज्बेकिस्तान को जरगाव दा लातिगा ने मंगा बिलियन डॉलर पाउंड रे आपिया में छेदगाव है अनुगा तिगा बता आओगा आ महा प्राइम मिनिस्टर है ऑर्डर ऑफ ओली दराजली दोस्तिक अवार्ड हाँगा बता आओगा महा इसी मिसिबा कांग्रेस लीडर शारुबा इंडिया माचे प्रेसिडेंट शारुबा भारत रत्न प्रणब मुखर्जी शिबा इन इगा नमह आया वोलागा जिता ने अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू दोने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन में लाहेगा ने आया खुगा जिता लगादा आओगा इंडियन नेवी में एता ने नो आई एन एस निपुंची जने पगम बदा आओगा नोबेल स्टाफ माचे हेता एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन में ओना मुंबई माचे नोबेल डॉकयार्ड माने डीएसबी आईएनएस निपुण आई पहागा ने इंडिया में मैगो माचिको को मने हुआ उमा निपुण में तांदो आवे आशादा लाय पदा आहोगा माचिको को मने आंदो नेगा निपुण रो खाय माने हो इंडियन नेवी माचे दाता का मन है तांदो आमो आमो बहुशादा ने एडमिरल आजम में लाओ बदा आहोगा बुनी अपर सुबंसी डिस्ट्रिक्ट दापुर जाति को छे गांधी मार्केट मा अमरु हुशोगे में अंजे अमो एमुदो ने हिमु ओउ को रोतो बदा आहोगा फायर सर्विस डिपार्टमेंट मा छे में मादना अशुतिगा एमु ने एकिशा ओ फिपो जिगा में अमुआ बमा हो अमरु है ऐसे अमाने हुगे छे असागे जिंदा लगा अरुणाचल प्रदेश माचे वेस्ट कामिंग ईस्ट कामिंग पाके के संग धोने पपुम पर डिस्ट्रिक्ट मा अबू न्या नया अरुण मया अबुरु चेम्बरो नाप्रा आयो सदा ने ईटानगर मेट सेंटर माच में ला होगा ने इकिशा हूँ डिस्ट्रिक्ट मा अबू आयो सदा ला होगा श्रीलंकन गवर्नमेंट में श्रीलंका माचे क्रिकेट तामगा अखनो मा अबू सुबा जिबुदा लाने हनु श्रीलंका माने वुमेन्स चैंपियन ट्रॉफी अखावे लातेगा चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में गिलागा नंबर ने श्रीलंका में अब ताहो टीम एमगामा की बिजगाऊंगा असहिम बता लगा आ टूर्नामेंट गिलागा नंबर माने श्रीलंका में ची दिया हुआ चुप ऐने जाओ चिमा लगा महो अब आतिका जिया माने चैंपियनशिप अखानवे ला होगा जिमी ऐतनिची इदमिश्मी आहो लिमाओ दबाए।

0: echa akaswani itanagar nali idmismi programma echamta ashe ahonso khyama ho etany hendo
1: sangam lingi si chashe chi arji
2: आप सुन रहे थे इदुमिस्मी श्रोताओं का समाचार। इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आपने सुना अभी प्राग की आवाज में ये गाना। आप आज श्रोता सुन रहे हैं बागी 4 के चंद गाने। अगला गाना पे से स्टेविन बेन की आवाज में।

शिल्पा राव की आवाज में आप सुन रहे थे बागी फोर का ये गाना, और इसी के साथ ही हमारे आज के इस हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के सेगमेंट को यहीं समेटते हैं। और आप श्रोता, आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसार श्रोताओं का समाचार, और हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता रितेश सिंह और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। श्रोता दोस्तों, तांगसार श्रोताओं के समाचार के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर। इसके लिए स्टूडियो में मौजूद है आरजे श्लोकना। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Have a good time ahead.

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव से। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है।

जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जो मिला है उसकी कद्र करना जरूरी है। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग डियर लिसनर्स। हर शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होता, कभी कभी नए हौसलों की शुरुआत भी होती है। तो इन्हीं नए एहसासों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम से मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना, और अगले कुछ घंटों तक मैं यही बनी रहूंगी। अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले यानी कि दूसरी प्रसारण सभा में हमारे संग बने हुए थे आरजे कविता, और अब से लेकर मैं यानी आपकी आरजे दोस्त सुलोकना बनी रहूंगी इस तीसरी प्रसारण सभा में। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तना तुम।

0: और दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं इस तीसरी प्रसारण सभा के सबसे पहले कार्यक्रम की ओर, जो है गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

लाल पीली अखिया के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर पे पुनः स्वागत है। ये है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम आपके लिए पेश करते हैं छोटी छोटी कहानियां और साथ ही पेश करते हैं चंद सुरीले नगमे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी हास्य कहानी जिसमें है धूप की गर्मी, मेंढकों की खुशी और एक ऐसी शादी की बात जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी सूरज का विवाह।

एक बार की बात है। गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर अचानक लोगों ने खबर सुनी कि सूरज का जल्द ही विवाह होने वाला है। सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए, मेंढक भी बहुत प्रसन्न हुए और पानी में उछल कूद मचाने लगे। एक बूढ़ा मेंढक पानी के ऊपर आया और सारे मेंढकों को समझाने लगा कि ये प्रसन्नता की नहीं, दुख की बात है। और उन्होंने कहा, मेरे साथियों, तो दोस्तों, उस बूढ़े मेंढक ने कहा कि ये प्रसन्नता की नहीं, दुख की बात है। और आगे उन्होंने कहा, मेरे साथियों, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या ये वाकई खुशी मनाने की खबर है? एक अकेला सूरज तो अपनी गर्मी से हमें झुलसा देता है। जरा सोचो, जब इस सूरज के दर्जन भर बच्चे हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे।

कहानी तो खत्म हुई, लेकिन उम्मीद है इसके शरारत भरी बातों ने आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर छोड़ी होगी। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में अब वक्त है अगले गीत का।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: तो दोस्तों फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसे के गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है. लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से. हम फिर हाजिर होंगे शाम के 5:05 पर लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव.
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes.
4: नमस्कार, यह आकाशवाणी है. अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक जारी. सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया. नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज. मृतकों की संख्या बढ़कर 9

0: 103 हुए, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। कायक लाम क्राम हमारी यात्रा पर्यटन और संस्कृति अनुभव यात्रा का समापन ईटानगर स्थित स्टेट बैंकेट हॉल में हुआ। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से पर्यटन टूर ऑपरेटर्स और होम स्टे मालिक शामिल हुए। 21वें तादातांग स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के जोनल राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड समिति 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों के सहायता के लिए INS निपुण को बेरे में शामिल किया। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशिया कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक जो जारी है, इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान के 2 दिन की यात्रा से पहले आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता उभरती भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व के बारे में भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4247 से अधिक लोग अब भी लापता है। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष।
0: मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति एक प्रतिष्ठित राजनेता, असाधारण ज्ञान और विवेक से संपन्न विद्वान तथा समर्पित जनसेवक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के सबसे प्रतिष्ठित राजनेताओं में से एक डॉ प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में डॉ मुखर्जी के उल्लेखनीय योगदान, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की गहरी समझ और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा। कायक लाम क्राम हमारी यात्रा पर्यटन और संस्कृति अनुभव

भव्य यात्रा का समापन समारोह राज्य के बैंकेट हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लगभग 100 पर्यटन से जुड़े लोग, टूर ऑपरेटर्स और होमस्टे मालिक शामिल हुए। ये समापन समारोह

0: मध्यम उद्यम मंत्रालय की RAMP पहल के तहत उद्योग विभाग का सहयोग प्राप्त हुआ। 21वें तादरतांग स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के जोनल राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं। इस साल अरुणाचल प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड समेत 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं और उन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप्स में 2 टीमें फाइनल राउंड में पहुंचेंगी जो यूपिया में खेली जाएगी। ये टूर्नामेंट APFA द्वारा खेल विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसे SAA ने प्रायोजित किया है। सरकार ने देश में चिप निर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण के लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
1: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट बोट INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया है। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा है कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र में न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावना है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं के योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाले बनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।
2: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4,000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with the friends of India in Bishkek on the first day of his two-day visit to Kyrgyzstan. 4 delegations working with India in various fields were present on the occasion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with the leaders of the Shanghai Cooperation Organization member states. These include meetings with the heads of the state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. PM appreciated their energy, enthusiasm and valuable contributions towards strengthening the bonds of friendship between India and Kyrgyz Republic. Prime Minister will hold bilateral meetings today with the leaders of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow he will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. The government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. Addressing a press briefing in New Delhi today, Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav said with this India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Mr. Vaishnav added

समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में स्वागत है। आप सुन रहे थे नौकते श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है और अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

इश्क ही इश्क है जहां देखो, कि इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में भर रहा इश्क है। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम, शंकर महादेवन और उनके साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सलामे इश्क का टाइटल सॉन्ग। और इसी के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: बिल्कुल, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। कार्यक्रम में आगे है मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है। उदित नारायण एवं साधना सरगम की आवाज में

और दोस्तों फिल्म धूम के इसी दिलबला के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक बस यही तक। लेकिन आप जाइएगा नहीं, अब से कुछ ही पलों में लेकर आ रहे हैं सोलफुल सूदिंग हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम की महफिल, ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर सरोन FM 103.1 MHz।

और उन्होंने लिखा इस गजल में, हम कोई वक्त नहीं है हमदम, जब बुलाओगे चले आएंगे। महान शायर निदा फाजली साहब के लिखे गए इसी गजल के साथ ही हमने शुरुआत की एक ऐसे वादे से, यानी कि एक ऐसे गीत के साथ जो वक्त की बंदिशों से परे है। कार्यक्रम शाम की महफिल में आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत है और इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं सोलफुल सूदिंग हिंदी नगमे।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़

कि दुनिया के कायदे कानून इसे कहाँ समझ आते हैं, कि दुनिया के कायदे कानून इसे कहाँ समझ आते हैं। ये मन चला दिल है जनाब, वही जाता है जहाँ इसके अपने बुलाते हैं। कार्यक्रम शाम की महफिल है और अभी आप सुन रहे थे मनचला, शफाकत अमानत अली और दुपुरपंत की आवाज में फिल्म हसी तो फसी से, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। खैर दोस्तों, कार्यक्रम में नगमों का सिलसिला जारी है, तो चलिए बढ़ चलते हैं अगले नगमे की ओर।

The world's much brighter than the world you see. शेखर रावजियानी एवं कैरोलिसा मोंटेरा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे तुमसे ही तुमसे फिल्म अनजाना अनजानी से। और दोस्तों कार्यक्रम शाम की महफिल में आज बस इतना ही, लेकिन फिर कहेंगे जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में हम फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर सरोन FM 103.1 MHz।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दवा गम जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। खैर दोस्तों, आप मजा ले रहे थे फिल्म चलते चलते गीत का टाइटल सॉन्ग, जिसे कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर ली है। आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। तो इस अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे हिंदी फिल्मी नगमों के संग, बैक टू बैक नगमे, लेकिन कुछ ब्रेक्स के संग। कहते हैं कि ब्रेक सिर्फ कार्यक्रम में ही नहीं, जिंदगी में भी कभी कभी ले लेनी चाहिए। इसी नोट पर चलिए बढ़ चलते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर।

सुनिधि चौहान और उनके साथियों की आवाज में आप सुन रहे हैं मेरे संग फिल्म न्यूयॉर्क से। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इसी गीत के साथ ही हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं। 6:30 होते ही आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार हम फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। ऑल ऑन आकाशवाणी ईटानगर सरोन FM 103.1 MHz।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हेलो नमस्कार, एक बार फिर से अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर लिसनर्स। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर। तो दोस्तों, जब हम 90s के दशक के बॉलीवुड संगीत की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी आवाज भी गूंजती है जिसमें रोमांस की कशिश भी थी, दीवानगी की हद भी थी और खलनायकी का मर्दाना अंदाज भी था। जी हाँ, आज हमारे शो के कलाकार हैं विनोद राठौड़।

ईयर 1992 में एक फिल्म आई थी दीवाना, जिसने किंग खान शाहरुख को स्टार बना दिया। इस फिल्म में विनोद राठौड़ ने एक ऐसा गाना गाया जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला। तो चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला विनोद राठौड़ जी का गाया हुआ नगमा।

ए मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार। सच में इन गानों को सुनकर लगता है कि अच्छा संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता, वे हमेशा जवान रहते हैं। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर, आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना के संग। और कार्यक्रम में अगला नगमा है जिनके बोल हैं, मगर कोई चेहरा भी क्या तुमने पढ़ा है। आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल सीधे 90s के दशक के उस जादुई दौर में चला जाता है। तो बिना और देरी के चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में इस अंक का आखिरी नगमा, आशा भोसले एवं विनोद राठौड़ की आवाज में।

तो दोस्तों, आज के कलाकार में हमने विनोद राठौर जी के उस सुनहरे सफर को याद किया, जिन्होंने अपनी बुलंद और सुरीली आवाज से हमारी यादों को खूबसूरत बनाया। बताना चाहेंगे कि हम आपको छोड़े जा रहे हैं इसी गीत के साथ, अब से कुछ ही क्षणों में यानी कि 7 बजते ही आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार हम फिर हाजिर होंगे लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: Uzbekistan ga Tashkent lo alo luni gova mor ga alo lo gova kago jigri la mok eni ara lo nin asa sami sisa agom ham president sabkate marji yoye ga ajen ba jami sit kuma khal mem pato o ko bharat la uzbekistan pe ni ga sibam ga bam sa nam te ham aya de ba sok mok eni gud kha mumi sir kuna ham la leder enyi ha aum a ham jamme chita pu kuna ma o ka nam te buri gola ba ken golo rigo mengo ham ale ba riba mem ba shi de ku ba aum a ham tulik twa ga mi staff kuma ham mem pa tha to ke lo president ti ba bharat lo shi ge ka grik la bharat ratna amin ham pa na doctor punam mukherjee ge shid alo ham silo arunachal pradesh te ge chief minister pema khanto ya me pa sak pa jip kuma o ke ke lo president ba se ge khuna scholar shi ge lega ba agum a ham alba jag ge ge grik la so bharat ge public ni ge lega ba bu ge sicha ge cham le ham rik dag ne ke jip kuma kham la da khanto ya social media la first mul ge grik la japa tap kuma khan me pato osok tayo loke lo bharat moke lo president ba se ge kunga poto ago lo upu ogar ham talek jila deputy chief minister chona me ye kumji joji tap kuma khal me patato no shinshi pu shi makaswani itano pokum lokke tal do nya to apar sosri district dapur jo gand market to ko lo korpa me ene gde khne la local ni dona dang ne gde ne lomkor pak do ko um sig mer kha len jip ku ba ok dukan gde kham la local ni gde ga nam gde kham um sig mer kha me go kuma ke jik ri ke la korpa me ene gde ne na local ni dona dang ne gde ne h alba gde akka alba sim ku me ka tukuna ba kham la men pa to ok so ओमसिगमर हम पेंगाब ने इसगारी है जुगलक लासो को ओमसिगमर हम नाम केवगद लो गुसुगदाला गुलक ममा दुकु ब पेंगाब जिप कुमा ओकसो क ओमसिगमर ह योग लोक गुलम पुक नाम दे ओक दुकान ग यरा हम ला नाम गद हम ये दे नोगो कुमा क जिप कुद हक नाम सोज गद ब चेंबे क ब ग माक दुकु न ब ओक निग दे न उन तार गद ब मप कुद ओक दोन अर हम ये दे नोगो गुजे जिप कुद हक न लुक लोचिन अलबे चेंपा ब प मते ग दुकु न हम नेम पा था तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट का वेस्ट कामिंग ला ईस्ट कामिंग पाके के संग ओक पापुम पर डिस्ट्रिक्ट के गद ने ऑरेंज अलर्ट पर ईटानगर का मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जबक जी रिक ला सोक डिस्ट्रिक्ट लो दोगुम दोरा द आजेन बे निदो ह दत अलब खुल जिर कुन हम ला जपा ताप कु म हम तो ओक्सोक तायो लो स्टेट के उरु डिस्ट्रिक्ट गद ने येलो अलर्ट पर मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया है जपा ताप कु म हम ला मेम पा तो कसरूंगन शिपु ये है वो
1: सुन रहे थे आप अभी निशी श्रोताओं का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

तो चलिए दोस्तों, अब से लेकर रात्रि के 8 बजे तक आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां। इस अंक में ब्रेक्स भी होंगे और ढेर सारे नगमे भी होंगे, तो देर किस बात की, चलिए बढ़ चलते हैं इस हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

और दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह सिलसिला जारी रहेगा रात्रि के 8 बजे तक। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हिंदी फिल्मी गीतों के सफर की ओर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: तो दोस्तों, इन्हीं नगमों के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: संगीत किसी भाषा या प्रांत की सीमा नहीं जानता। संगीत तो एक एहसास है जो हर दिल को कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी मस्ती के सागर में तो कभी यादों के भंवर में सैर कराता है। जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। एक बार फिर कार्यक्रम अपना गीत के साथ मैं हूँ आपका रेडियो साथी गैर अतर। तो चलिए संगीत के इस खुशनुमा सफर का आगाज करते हैं एक ईदू गीत से, जिसे लिखा है ताफुली पुलू ने और आवाज है मेडिको मेंजो की।

इश्क में इंसान फना हो जाते हैं, उन्हीं को सोचने में और उन्हीं को चाहने में खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हर घड़ी हर पल नजरें उन्हीं को ढूंढती हैं, हर चेहरे में वो नजर आती है, फिर क्या, बस इसी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तभी तो एक तरफा प्यार में खतरा ज्यादा है। श्रोता, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, ताकम दादो तालोम की आवाज में निशी गीत।

नोकपान हांगसिक की आवाज में आप सुन रहे थे तुत्सा गीत। श्रोता आनंद ले रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के गीतों का कार्यक्रम अपना गीत के अंतर्गत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारे श्रोता हमें लाइव सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।

ससुरा की आवाज में ये था अपतनी गीत। हर पल ये दिल तुम्हें याद करता है, न जाने कब तुम इस दिल के एहसासों को अपनाओगी। तुम्हारे साथ बिताए उन पलों की यादों से ही मैं खुश हो जाता हूँ, मुझ में नयापन आ जाता है। बस तू हमेशा के लिए दूर मत चली जाना। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत है गालो भाषा में और आवाज है स्वर्गीय मार्तो कामदा की।

एक और नए अंक के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you will catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: सुन रहे थे आप पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोता दोस्तों, अब प्रस्तुत है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा, भूले बिसरे गीत।

चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। बिल्कुल इसी गीत का आप आनंद ले रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से। और दोस्तों ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां भूले बिसरे गीत जिसे आप सुन रहे हैं बिल्कुल आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अगले नगमे की ओर। अगला नगमा है आशा भोसले एवं शमशाद की आवाज में। तो बिना और देरी के पेश है आशा भोसले एवं शमशाद बेगम की आवाज में कजरा मोहब्बत वाला।

दो दिलों की दास्तान से अभी आप सुन रहे थे हमराही, लता मंगेशकर एवं सुरेश वाडकर की आवाज में। कार्यक्रम में अगला नगमा है किशोर कुमार की आवाज में।

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीष शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थी। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ,
2: स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब दिव्यांग हैं हम लोग, हेलो।
0: जी जी,
2: हम लोग जब दिव्यांग हैं तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है, और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या इसे हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो, संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी बात उसी से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा।

0: या निकालना है, एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
1: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को जरूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी।
2: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
1: नमस्कार जी।
2: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में, कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं।
1: जी,
2: ये जो चीज हुआ है लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
1: जी जी
2: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज की रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
1: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए, देखिए, जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है। तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को, इन योजनाओं ने प्रभावित किया है।
0: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ

0: ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इस वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई एलपीजी की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट वे खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इनफॉर्मर मनी लेंडर्स हैं, उनसे जो 40% से 50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं, गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लेंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा, अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट पीएमजेडीवाई के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्राय ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
0: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है, इससे हमारा काफी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं, जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहां ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
1: जी जी,
0: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है, और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: जी नमस्कार, जीतेंगे विशेषज्ञ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी इसमें बीसी मैं भी कॉरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मैं मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें, इस पर कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इस पे बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पे, जितना हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इस पे थोड़ा सा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे।
0: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, यह बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर

0: तो कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए है, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है। अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे।
1: जी, तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका प्रश्न? जी जी कहिए सवाल।
2: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
1: आपका प्रश्न।
2: आम पब्लिक के लिए
1: जी, तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
0: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपए लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नहीं सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहां जरूरत है और कहां नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
0: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहां का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं, तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
1: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में, क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
4: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस।
1: जी,
4: ये एआई की मॉडल है, डिजिटल इनपुट प्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है, जिससे हम कह सकते हैं

0: एक्सटेंडलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को, यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
1: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से है लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
1: जी
2: सर, मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी जरूर जरूर।
3: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निराकरण करा सकते हैं।
1: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई है।
0: अभी जो प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
1: जी,
0: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
1: जी।
0: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, तो आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना डिटेल देखना।

0: इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूचुअल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
1: जी महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है एआईआई के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
1: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
1: जी। एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या ओटीपी किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
1: जी। देखिए अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में समस्या में कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो क्यूआर कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर, अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है यूपीआई। दूसरा, इसी साल आरबीआई और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
1: जी,
0: जो
1: जी
0: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
1: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा। बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभ मोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी ये जो

0: प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए airnsdtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांत के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जपारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना

0: The world number 78 defeated third seed Denny Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अपनी किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इन द्विपक्षीय बैठकों में आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

0: श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्ड डी वेवर बुधवार से 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्वाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक बचाव उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 949 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने बाढ़ को अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 66वीं मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों